आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें हम आपके ईमेल्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को शामिल करते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी जिनके पास नहीं है वो नोट कर लें, fmgoldairdelhi@gmail.com। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। तो लीजिए, पहला ही ईमेल हमें मिल गया है गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का संदेश हमें मिला है। कोई भी गीत, ये इन्होंने लिखकर भेजा है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, अनिल जैन, संजय ढींगिया, राधा नामदेव, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई का संदेश हमें मिला है। ये जंगली फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, तो ये रहा फिल्म जंगली से प्यारा सा गीत।

जनाबे आली, आपकी संदेश, आपके मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं। हमारी तरफ से राम राम स्वीकार करें, प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद आ रहा है। ये हमें लिखकर भेजा है आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज जी ने। वेद प्रकाश चौहान इनके साथ हैं, सुखबेर सूबेदार अमर सिंह जी भी इनके साथ हैं। अपनी पसंद का गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरजिंदर शिंदा जी हैं पंजाब से, गांव नथाना पंजाब से। हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, और खुश रहो खुशियां बांटो, ये इन्होंने हमें लिखकर भेजा है। इसके अलावा संदीप मक्कड़ जी हैं, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल सानी, ये पिंगावाला चौक गुरैया जलंधर से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। ये कौन है? ये है शंभू दयाल खटक, बिमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, ये सब गांव जाखौद राजस्थान से अपना संदेश हमें भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारे प्यारे से संदेश हमें मिल रहे हैं। कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली का संदेश हमें मिला, और ये गाना सुनना चाहते हैं। ये

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव

0: 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: .1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम लेकर मैं भावना आपके साथ हूं। और हमारे साथ हैं इस वक्त मेल के जरिए राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, चारू जटोलिया, दिल्ली नांगलोई से। इनका संदेश हमारे पास आया है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। डीके हैं ये, डीके कौन है? कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, और नई दिल्ली से इनका संदेश हमें मिला है। अपनी पसंद का गीत इन्होंने लिंक कर हमें भेजा है। कोशिश करेंगे हम आपका गीत सुनवाने की। हरियाणा रोहतक से अंकित कांगड़ा है, मोनी कांगड़ा है, प्रिंस बोट है, सीताराम कांगड़ा है, साहिल कांगड़ा है, इनका भी संदेश हमें मिला है। और कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, इनका संदेश आया है। हेमंत कुमार का आज जन्मदिन है। जी हाँ, गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का आज जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष पर फिल्म शर्त का ये गीत ये सुनने की शर्त रख रहे हैं, मतलब इच्छा जता रहे हैं। तो ये हमने आपकी इच्छा पूर्ण कर दी। ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत है आपका। भूषण खेड़ा जी का हमारे पास संदेश आया है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सब कुछ लेकर भेजा है इन्होंने। फाजिल्का पंजाब से ये खेड़ा परिवार पूरा हमारे साथ जुड़ा है। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और अपनी पसंद का गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा है। इसके अलावा हमारे साथ फागुराम यादव जी जुड़े हैं, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, संभलपुर कांकेर से ये हमारे साथ जुड़े हैं। और कौन है जो हमारे साथ जुड़े हैं? अनिल मोहन जी जुड़े हुए हैं, टिल्लू नायक हैं, उषा मोहन है, मधु नायक हैं, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से इनका संदेश हमें मिला है। डी के पी परिहार जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और नमस्कार इन्होंने मुझे लिखकर भेजा है। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम इन्होंने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भोपालगढ़ राजस्थान से इनका संदेश हमें मिला है। और इसके अलावा सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग जी का संदेश हमें मिला है और गाना सुनना चाहते हैं ये।

ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से हमें प्रवीण हागुणे, योगिता हागुणे, कुमारी प्रियाली हागुणे, पार्थ हागुणे और पूरा हागुणे परिवार से संदेश मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये महाराष्ट्र से हमें संदेश मिला है। अगला संदेश है ये कहाँ से आया, एक मिनट इसे देखते हैं। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही साहब हैं, शाहीन फातिमा हैं, अनु खान हैं, अदनान खान हैं, फैजान खान हैं। प्यार भरा आदाब इन्होंने हमें लिखकर भेजा है, आपको भी आदाब। इसके अलावा हमारे साथ कौन जुड़े हैं, तुलसी मस्कीन साहब हैं, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, वीना मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से। नहीं, ये तो गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से जुड़े हैं, लेकिन इन्होंने ही हमें नीचे लिखकर भेजा है चंडीगढ़ से। इनके साथ और भी लोग जुड़े हैं, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना, यानी वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और ये कहते हैं कि हम 30 साल पुराने श्रोता हैं, कोई नाराजगी, अभी तक कोई रिस्पांस क्यों नहीं। अरे रिस्पांस मिल तो गया, क्यों इतनी नाराजगी, हम क्यों आपसे नाराज होंगे, हम तो खुश हैं आपका संदेश पढ़ के। अरविंद कुमार, गुड़िया रानी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी, बेनी पट्टी, मधुबनी बिहार से इनका संदेश मिला है और ये गाना सुनना चाहते हैं फिल्म अनीता से, ये

इसी के साथ दिल का मेल बॉक्स यहीं पर मुझे संपन्न करना होगा, लेकिन 11:10 पर तस्वीर प्रोग्राम में मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: इससे पहले

0: किया कि राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में बढ़ोतरी की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमानन ईंधन के निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमरीका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। इस बीच LNG ले जा रहे भारतीय टैंकर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इसमें 62,370 मीट्रिक टन LNG है। इसके 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। फीफा विश्व कप में केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए दिग्गज टीम स्पेन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of the United Kingdom, Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार आपको एक नई जगह घुमाने ले जाने की कोशिश करते हैं रेडियो तरंगों के माध्यम से। मैं हूं आपके साथ भावना, और आज हम जहां जा रहे हैं वो है कर्नाटक का एक छोटा सा तटीय शहर गोकर्ण, एक छिपा हुआ रत्न जहां आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों मिलते हैं।

गोकर्ण के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक है यहाँ पर ओम बीच। और इस ओम बीच का नाम कैसे पड़ा? इसके आकार से, शुभ ओम चिन्ह से मिलता जुलता है इस समुद्र तट का आकार, और इसीलिए इसका नाम पड़ा ओम बीच। सुनहरी रेत का ये जो किनारा है, खूबसूरत मनोरम किनारा, ये देखने में तो बेहद खूबसूरत है ही, लेकिन जल क्रीड़ा प्रेमियों के लिए भी प्रमुख केंद्र है। यानी कि देखने में खूबसूरत है, सुनहरी रेत है यहाँ पर, इसके अलावा आप यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जल क्रीड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके साथ कोई एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ये सब करते हुए, मतलब सब चीज़ों का आनंद लेते हुए, आप पैरासेलिंग और बनाना बोट राइड जैसी गतिविधियों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बहुत खूबसूरत है यहाँ का मौसम भी। आप सोचिए कि खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की सी किरणें जो है वो रेत पर भी पड़ रही हैं, चमकीला रेत और नीला नीला पानी दोनों आपके पास हैं, तो फिर क्यों ना आप ऐसे मौसम में, ऐसी फजा में खो जाएंगे।

गोकर्ण का महाबलेश्वर मंदिर ये भी देखने लोग दूर दूर से आते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो यहाँ गर्भगृह में आत्मलिंग स्थापित है जो पूजनीय है, और ये आत्मलिंग चुंबक की तरह अपने भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। और दूसरा कारण है यहाँ की द्रविड़ वास्तुकला जो इस मंदिर को और भी खास बनाती है। महाबलेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ का कुडले बीच भी लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे शांत वातावरण की तलाश करने वाले जितने भी लोग हैं वो यहाँ पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर खास है यहाँ नारियल के पेड़ों से घिरा सुनहरी

कायम रेत से सराबोर कुडली बीच। जी हाँ, खासियत मतलब अगर शब्दों में हम बयां करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। नारियल के पेड़ हैं चारों तरफ और बीच में सुनहरी रेत है। ये कैसे कहें, इसको बयां करना थोड़ा मुश्किल है। एक अलग तरह का एहसास है जो यहाँ पहुंचकर ही आपको महसूस होगा। जब आप सुनहरी रेत पर लेटकर ऊपर की ओर देखेंगे ना, आसमान की तरफ, और बीच में आपको वो नारियल के पेड़ जो है वो नारियल से भरे हुए दिखाई देंगे, तो एक अलग तरह की अनुभूति होती है। और यहाँ पर ना सूर्यास्त देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बीच पर कई तरह की छोटी बड़ी दुकानें भी हैं जहाँ पर आपको खाने पीने के लिए सामान मिल जाएगा, आपको पेय पदार्थ मिल जाएंगे। तो उनको पीते हुए आराम से बीच पर लेटिए और आनंद लीजिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब आप अकेले ना हो, आपका अपना आपके साथ हो।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। ये है प्रोग्राम तस्वीर, मैं हूं आपके साथ भावना, और आज हम रेडियो तस्वीर बना रहे हैं कर्नाटक के खूबसूरत तटीय शहर गोकर्ण की। खूबसूरत नज़ारे, इतने खूबसूरत कि आंखों में बस जाएं, दिल में उतर जाएं।

आप भी बात मानिए और हाफ मून बीच जरूर पहुंच जाइए अगर आप इस वक्त यहाँ है गोकर्ण में कर्नाटक के, क्योंकि पता है ओम बीच जिसको हमने शुरू में ही आपको बताया था, वहाँ से पैदल चलकर ही हाफ मून बीच जो है पहुँचा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत है ये बीच, हरे भरे पेड़ जो हैं वो यहाँ की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। बहुत ही मनमोहक सी जगह है ये, एकांत शांत, और पता है जो भी शांति चाहते हैं एकदम कि शांत सा बीच हो, चहल पहल ना हो एकदम, वो यहाँ आते हैं। और इसका जो आकार है ना वो आपको पता ही चल गया, जैसे हाफ मून मतलब अर्ध चंद्राकार, ये आकार है। एक ओम बीच जो हमने शुरुआत में बताया था उसका जो आकार है वो ओम की शेप में है, और इस बीच का जो आकार है वो अर्धचंद्रा आकार है। इसके अलावा गोकर्ण का इसी नाम से गोकर्ण बीच जो है ये भी बहुत खूबसूरत है, बेदाग सुंदरता है यहाँ की, और यहाँ पर भी शांत वातावरण है, भीड़भाड़ से दूर शांति। और यहाँ की खास बात, यहाँ की जब लहरें उठती हैं बैठती हैं, मतलब लहरों का उठान और बिठाव, ये दोनों जब एक साथ मतलब होती हैं, जो आवाज़ जो ध्वनि निकलती है उसको बैठकर आराम से यहाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा। कुछ ऐसा कि बस अब यहीं रुक जाएं, थोड़ी देर कहीं भी ना जाएं, यही समुद्र की लहरों की आवाज़ों के बीच अपने आप को खो दें और यहीं पर रहें, कहीं ना जाएं, कहीं भी नहीं।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: मम्मी ये जहाज कहाँ जा रहा है?
8: बेटा अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
9: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
8: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
9: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

बहुत ही खूबसूरत है गोकर्ण और यहाँ की हर चीज, यहाँ का नाम भी खास है और यहाँ का हर काम भी है खास। यहाँ का पैराडाइज बीच जो है ना, हमने दो तरह के बीच आपको इससे पहले जो बताए, ओम बीच और हाफ मून बीच। तो हाफ मून बीच से बोट के जरिए, नाव के जरिए, और ओम बीच से घने जंगलों से होते हुए आप यहाँ पैराडाइज बीच पे पहुँच सकते हैं और बिल्कुल स्वर्ग के समान है ये बीच। कवाला केव्स हैं, ये प्राचीन चूना पत्थर की गुफाएं हैं, लाखों साल पहले ये बनी थी और भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र स्थल के रूप में इसे पूजा जाता है। यहाँ पर भी लोग आते हैं। कोटी तीर्थ एक जगह है, हजारों झरने जिसका मतलब होता है, और यहाँ पर चिंतन मनन करने लोग आते हैं। ये आर्टिफिशियल तालाब है, मानव निर्मित है और मंदिरों और प्राचीन इमारतों से घिरा हुआ है। यहाँ पर लोग अनुष्ठान करते हैं और इस तीर्थ में डुबकी भी लगाते हैं। निर्वाणा बीच भी बहुत खूबसूरत है गोकर्ण का, और यहाँ का भद्रकाली मंदिर, इसके तो क्या ही कहने। भद्रकाली मंदिर जो है, मतलब जो नकारात्मक ऊर्जा है उनसे बचाता है। माँ भद्रकाली की प्रतिमा है यहाँ पर, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। बहुत ही खास ये जगह मानी जाती है भक्तों के लिए। तो अब आप ये बताइए कि आप कब मन बना रहे हैं यहाँ आने का?

आज की तस्वीर आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी। गोकर्ण की ये यात्रा आपके मन को भाई होगी। 12:10 पर घर आंगन होगा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का। मैं भावना चलती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियां, फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले

0: पांच स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की पहली जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit on the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada Mark Carney, Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Vikasit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said that despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence with increasing public participation. He said democracy has remained an integral part of the country's work culture and thought process. The Lok Sabha speaker said active and inclusive participation in democracy is essential for shaping the nation's future and achieving the goal of a developed India. Ahead of the re-examination of the National Entrance Cum Eligibility Test NEET UG 2026, which is scheduled for the 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency NTA has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTA said the restriction will cover the day of the NEET UG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN Ambassador Harish Parvathaneni made these remarks while addressing the Intergovernmental Negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Parvathaneni said UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the permanent five members.
2: Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category.

만든 घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार के साथ करते हैं। स्वतंत्र होने के लिए सबसे पहले दो चीजों से मुक्त होना पड़ता है, बुरे भविष्य का डर और दुखद अतीत की यादें। हम में से कई लोग बीते हुए कल की गलतियों या दुखों को ढोते रहते हैं और साथ ही आने वाले कल की अनिश्चितताओं से डरते हैं और आज को जीना भूल जाते हैं। लेकिन जीवन का सबसे सुंदर सच ये है कि अतीत एक सीख है, सजा नहीं, और भविष्य एक संभावना है, भय नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर, एक नई ऊर्जा, नई सोच, ढेर सारी खुशियां और भीगे हुए मौसम के साथ।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को, फिल्म थी धरती। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे देश में बड़े बड़े अस्पताल, टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं की जो मजबूत नींव दिखाई देती है, उसकी शुरुआत किसने की होगी? चलिए आज आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने राजमहलों की सुविधाएं छोड़कर देश के स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर की। जरा कल्पना कीजिए, नया नया आजाद हुआ भारत, सीमित संसाधन, बीमारियों का प्रकोप और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी। ऐसे समय में किसी को आगे आकर यह कहना था कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है, और यह जिम्मेदारी निभाई राजकुमारी अमृत कौर ने। उन्होंने मलेरिया और क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाए, मातृ और शिशु स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया और स्वास्थ्य सेवाओं को गाँव गाँव तक पहुँचाने के प्रयास किए। देश का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसके निर्माण के पीछे किसका महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों? राजकुमारी अमृत कौर का। उन्होंने अथक प्रयास किए, इस संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया ताकि भारत में विश्व स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। लेकिन उनका योगदान यहीं तक सीमित नहीं था, वे महिलाओं की शिक्षा, उनके अधिकारों और समाज में उनकी भागीदारी की भी प्रबल समर्थक थीं। उनका मानना था कि यदि महिलाएं स्वस्थ और शिक्षित होंगी तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। आज जब हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं तो हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस सपने की पहली ईंट रखी थी। एक स्वस्थ राष्ट्र केवल अस्पतालों से नहीं बनता है, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व, संवेदनशील नीतियों और सेवा के संकल्प से बनता है। राजकुमारी अमृत कौर ने हमें यही विरासत दी और इस विरासत को आगे बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी है।

अभी हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज में ये गीत, फिल्म थी अनाड़ी। और दोस्तों, जब भी पश्चिम बंगाल का नाम आता है, मन में रसगुल्ले, दुर्गा पूजा और रविंद्र संगीत की छवि उभर कर आती है। लेकिन पश्चिम बंगाल का लगभग हर डिस्ट्रिक्ट भारत को एक अनमोल कला विरासत के रूप में दे चुका है। यह केवल एक राज्य नहीं बल्कि चलता फिरता कला संग्रहालय है। चलिए आज एक छोटी सी कलात्मक यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ की मधुर चटाइयाँ केवल बैठने के लिए नहीं होती बल्कि बुनाई की बेमिसाल कला का प्रतीक हैं। और पास ही है पिंगला का पट्टचित्र कला, जहां कलाकार गीत गाते हुए चित्रों के माध्यम से कहानियां सुनाते हैं, मानो कैनवस बोल उठता हो। अब रुख करते हैं पूर्व मेदिनीपुर का, जहां शंख शिल्प पीढ़ियों से जीवित है। इन्हीं शंखों से बंगाली विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक शंखा चूड़ियां भी बनाई जाती हैं, जो सौभाग्य और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती हैं। और अगर बात सुई धागे से भावनाएं बुनने की हो, तो वीरभूम की कांथा कढ़ाई को कोई मुकाबला नहीं। आज यही पारंपरिक कढ़ाई खूबसूरत कांथा सिल्क साड़ियों के रूप में भी दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। पुरुलिया के छऊ मुखौटे भी कम आकर्षक नहीं है। रंग बिरंगे ये मुखौटे केवल सजावट नहीं है दोस्तों, बल्कि लोक नृत्य की आत्मा है। नदिया के घूर्णी गांव की मिट्टी की गुड़िया दुनिया भर में अपनी जीवंत अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी में सांसें भर दी गई हों। हुगली के जूट शिल्प ने पर्यावरण के अनुकूल हस्तकला को नई पहचान दी है। कूच बिहार की शीतल पाटी एक ऐसी चटाई है जो गर्मियों में शीतलता का एहसास कराती है और कारीगरों के धैर्य की कहानी कहती है। दक्षिण दिनाजपुर में गोमिरा लकड़ी के मुखौटे लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का अद्भुत संगम है। और पहाड़ों की गोद में बसे दार्जिलिंग को हम कैसे भूल सकते हैं। वहां के तिब्बती हस्तनिर्मित कालीन अपनी बारीक बुनाई और सुंदर डिजाइन के लिए विश्व भर में सराहे जाते हैं। सोचिए एक राज्य और कितनी विविध कलाएं। इन कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी

का कर्तव्य है, क्योंकि जब कोई कला खो जाती है तो उसके साथ इतिहास का एक अध्याय भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मिट्टी की खुशबू, रंगों का संसार, बंगाल की हर कला में बसता है प्यार, जिलों की पहचान, विरासत का मान, इन्हें संजोना ही है सच्चे भारत की शान। और इसी राज्य के वाइब के साथ सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को, फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। और आजकल ज़रा सी थकान हुई नहीं कि मल्टीविटामिन, बाल झड़ने लगे तो सप्लीमेंट, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो गोलियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें पहले से ही कितनी अद्भुत दवाइयां दे रखी हैं? तो आइए जानते हैं कौन से फल और सब्जियाँ हमें किन समस्याओं से बचाने में मदद कर सकती है। संतरा, मौसमी और नींबू, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करता है। गाजर, इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन आंखों की रोशनी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और टमाटर, इसमें पाया जाने वाला लाइकोपीन हृदय स्वास्थ्य के लिए यानी आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और शरीर के हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। केला पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत है, यह रक्तचाप को संतुलित रखने और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक है। सेब, फाइबर से भरपूर, यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने में मदद करता है। पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन और फोलेट प्रचुर मात्रा में होते हैं जो शरीर में रक्त निर्माण और ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक है। चुकंदर, शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में मददगार माना गया है और सहन शक्ति बढ़ाने में भी लाभकारी है। आंवला, विटामिन सी का खजाना, यह इम्यूनिटी, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। पपीता, इसमें मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और कब्ज की समस्या से राहत दिला सकते हैं। अनार, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो रक्त स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। लहसुन, पारंपरिक रूप से हृदय स्वास्थ्य और संक्रमण से बचाव में उपयोगी माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए श्रोताओं, कोई भी एक फल या सब्जी किसी बीमारी का चमत्कारी इलाज नहीं है। असली ताकत है विविधता में, यानी आपकी थाली जितनी रंग बिरंगी होगी उतना ही बेहतर पोषण मिलेगा। और हाँ, यदि डॉक्टर ने किसी विशेष कमी के कारण सप्लीमेंट लेने की सलाह दी है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। लेकिन बिना आवश्यकता के केवल विज्ञापनों के प्रभाव में आकर सप्लीमेंट्स पर निर्भर होना ठीक नहीं है। शायद इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति हर मौसम में वही देती है जिसकी हमारे शरीर को उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगली बार जब भी आप बाज़ार जाएं तो दवाइयों को नहीं, मौसमी फल, ताज़ी सब्जियां और संतुलित भोजन की टोकरी भर कर लाइए। सेहत किसी कैप्सूल में बंद नहीं होती है, वह हमारी रोज़मर्रा की थाली में परोसी जाती है। प्रकृति के करीब आइए, प्राकृतिक पोषण अपनाइए और स्वस्थ जीवन को सेलिब्रेट कीजिए।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम को, फिल्म थी दाग। और दोस्तों, जब घर में मेहमान आते हैं और कोई पूछता है बेटी ज़रा चाय बना दो, तो यह बिल्कुल सामान्य सा लगता है, लेकिन अगर वही बात बेटे से कही जाए तो कई लोग हैरानी से देखते हैं। आखिर क्यों? क्या खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े समेटना या घर को व्यवस्थित रखना केवल बेटियों की जिम्मेदारी है? नहीं, ये जीवन जीने का कौशल है जो हर इंसान को आना ही चाहिए। दोस्तों, समय बदल रहा है। आज के दौर में महिलाएं घर के साथ बाहर भी अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां भी साझी होनी चाहिए और इसकी शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। अगर बेटा अपना बिस्तर खुद ठीक करना सीखता है, अपनी प्लेट सिंक तक रखना सीखता है, अपनी अलमारी व्यवस्थित रखना सीखता है, तो वो केवल घर का काम नहीं सीख रहा होता है, बल्कि वो अनुशासन, आत्मनिर्भरता और दूसरों के श्रम का सम्मान करना सीख रहा होता है। और हाँ, जैसे जैसे बेटा बड़ा हो, उसे खाना बनाना भी सिखाइए, चाय बनाना,

चावल पकाना अपने पसंद का एक सिंपल सा भोजन तैयार करना, ये केवल रसोई के काम नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है, ताकि भविष्य में वो अपने रोजमर्रा के कामों के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को स्वयं संभाल पाने की क्षमता भी है। उसे बचपन से ही ये समझाइए कि घर के काम कभी भी जेंडर आधारित नहीं होते हैं। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना या घर को व्यवस्थित रखना, ये महिलाओं के काम नहीं है बल्कि घर के काम हैं, जिनकी जिम्मेदारी घर के हर सदस्य की होती है। और यही सीख आगे चलकर उसे महिलाओं का सम्मान करना भी सिखाएगी। बेटों को विशेषाधिकार नहीं संस्कार दीजिए, उन्हें अधिकार ही नहीं जिम्मेदारियां भी सिखाइए, क्योंकि एक अच्छा बेटा केवल परिवार का सहारा नहीं बनता है, वो एक बेहतर समाज की नींव भी रखता है। हम सचमुच समानता अगर चाहते हैं तो उसकी शुरुआत घर से करनी होगी। बेटियों को सपने देखने की आज़ादी दें और बेटों को संवेदनशील बनने की शिक्षा दें, क्योंकि समानता की सीख किताबों से कम घर के माहौल से अधिक मिलती है। और दोस्तों, आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हम आपके संदेश का इंतज़ार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे अलका याग्निक को, फिल्म थी जख्म। और दोस्तों, खेल के मैदान में जब कोई खिलाड़ी जीत का जश्न मनाता है, कोई रिकॉर्ड टूटता है या हार के बाद आंखों में आंसू छलकते हैं, तो उन भावनाओं को हमेशा के लिए सहेज लेता है एक कैमरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन यादगार तस्वीरों के पीछे होता कौन है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण करियर की जिसका रिश्ता खेल और पत्रकारिता दोनों से है, यानी स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट का काम सिर्फ तस्वीरें खींचना नहीं होता है, बल्कि खेल की कहानी को एक फ्रेम में बयां करना होता है। एक बेहतरीन स्पोर्ट्स फोटो कभी कभी हजारों शब्दों से ज्यादा असर छोड़ देती है, चाहे क्रिकेट में उड़ती हुई गेंद हो, फुटबॉल में गोल का निर्णायक पल, या एथलेटिक्स में फिनिश लाइन पार करता खिलाड़ी। हर तस्वीर एक कहानी कहता है। लेकिन इस प्रोफेशन में आने के लिए सिर्फ कैमरा चलाना या जानना काफी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले जरूरी है फोटोग्राफी की तकनीकी समझ, जैसे कैमरा सेटिंग्स, शटर स्पीड, लेंस का चुनाव और सही एंगल की पहचान। खेलों की जानकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब आपको खेल के नियम और उसकी गति समझ में आ जाती है, तभी आप सही पल को कैमरे में कैद कर पाते हैं। अब सवाल है कि इस क्षेत्र में शुरुआत कैसे करें? आप फोटोग्राफी या मास कम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा कई युवा फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में भी शुरुआत करते हैं और स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं को कवर करके आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। हालांकि यह काम जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। कभी घंटों धूप में खड़े रहना पड़ता है, कभी बारिश में मैच कवर करना पड़ता है, तो कभी एक तस्वीर के लिए सही मौके का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी तस्वीर किसी ऐतिहासिक पल की पहचान बन जाए, तो सारी मेहनत सफल लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको खेलों से है प्यार, कहानियां कहना है पसंद और कैमरा आपका साथी है, तो स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म आपके लिए एक शानदार करियर हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग खेलते हैं इतिहास बनाने के लिए और कुछ लोग उसे कैमरे में कैद करके अमर कर देते हैं।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म थी माया। और दोस्तों, हमारे अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? जी हाँ, उनकी जानकारी। क्योंकि हमारे अधिकार तभी हमारा साथ देते हैं जब हम उन्हें पहचानते हैं। तो आज हम बात करते हैं भारतीय महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की। मान लीजिए किसी कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा हो या यौन उत्पीड़न हो रहा हो, तो क्या उसे चुप रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हर महिला को सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार प्राप्त है और वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अब एक और सवाल, क्या बेटियां पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार रखती हैं? हाँ, बेटियों को भी संपत्ति में वही अधिकार प्राप्त है जो बेटों को है। और अगर किसी महिला के साथ घर के भीतर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक हिंसा हो रही हो, तो उसे भी अपनी नियति नहीं मानना है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार हर महिला को प्राप्त है। साथ ही महिलाओं को समानता का अधिकार भी दिया गया है। कानून की नज़र में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। शिक्षा हो, रोजगार हो या सम्मानजनक जीवन, हर महिला इन अधिकारों की हकदार है। तो दोस्तों, अक्सर महिलाएं दूसरों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती है, लेकिन अपने अधिकारों को लेकर मौन रह जाती है। याद रखिए, जागरूकता आत्मविश्वास देती है और आत्मविश्वास बदलाव लाता है। तो आइए आज स्वयं से एक वादा करते हैं, अपने अधिकारों को जानेंगे, उन्हें समझेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनका उपयोग भी करेंगे। क्योंकि सशक्त महिला सिर्फ अपने जीवन को नहीं बल्कि पूरे समाज को दिशा देती है। और अभी हमारे पास कुछ मेल्स भी आए हैं। सुदर्शन मुखी जी, गौरी शंकर वर्मा जी और नवीन भाटिया जी, आप सबको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी चोरी चोरी। और दोस्तों जरा सोचिए, अगर पेड़ों की उम्र ना बढ़े तो घनी छांव कहाँ से आए, अगर नदी आगे ना बढ़े तो सागर तक कैसे पहुंचे, फिर इंसान अपनी उम्र बढ़ने से इतना क्यों घबराता है? शायद इसलिए क्योंकि समाज ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि जवान दिखना ही सफलता है, झुर्रियां समस्या है, सफेद बाल कमजोरी है और बढ़ती उम्र मानो जीवन का ढलान। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। केवल कैलेंडर के पन्नों पर बदलती संख्या नहीं है, यह अनुभवों का खजाना है, रिश्तों की गहराई है और जीवन को समझने की परिपक्वता है। 20 साल की उम्र में हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, 40 की उम्र में उसे समझना शुरू करते हैं और 60 की उम्र में जीवन का वास्तविक अर्थ जानने लगते हैं। सोचिए, अगर उम्र बढ़ना बुरा होता तो हम अपने बच्चों के जन्मदिन क्यों मनाते, हर साल केक क्यों काटते? सच तो यह है कि हम उम्र बढ़ने से नहीं बल्कि उससे जुड़े बदलावों से डरते हैं। लेकिन बदलाव तो जीवन का दूसरा नाम है। विज्ञान भी यही कहता है कि स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम और सामाजिक जुड़ाव बढ़ती उम्र का बोझ नहीं है बल्कि एक सुंदर यात्रा बना सकते हैं। इसलिए अगली बार कोई आपके सफेद बाल दिखे तो उसे छिपाने से पहले ये याद कर लीजिए कि यह आपके अनुभवों का पदक भी हो सकता है, क्योंकि उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, लेकिन उसे गरिमा, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीना पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो आइए बढ़ती उम्र से डरना छोड़ें, उसका स्वागत करें, क्योंकि जीवन की सबसे खूबसूरत कहानियां अक्सर उसके बाद के अध्यायों में लिखी जाती है।

अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म कभी कभी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया है। खुद से प्यार कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, छोटी छोटी खुशियों को संजोएं। फिर मिलेंगे नए विषय नई प्रेरणा के साथ। दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा

निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि ई-बीस ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेट्टेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:11:05। मैं आपका रेडियो हम सफर राम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीत निर्देशक, पार्श्व गायक और फिल्म निर्माता हेमंत कुमार के बारे में। जी हाँ, वही हेमंत कुमार जिनका पूरा नाम हेमंत मुखोपाध्याय था और उनके लिए मशहूर गीतकार सलील चौधरी और मशहूर पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने कहा था कि इनकी वाणी ईश्वर की वाणी है, यानी इनकी आवाज भगवान की आवाज है।

हेमंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आज ही के दिन यानी 16 जून 1920 को हुआ था, लेकिन मूल रूप से हेमंत कुमार का परिवार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बाद में हेमंत कुमार कोलकाता आ गए और यहीं पर उन्होंने मित्रा इंस्टीट्यूशन में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में ही उनकी मुलाकात सुभाष मुखोपाध्याय से हुई, जो कि आगे जलकर एक प्रसिद्ध कवि बने। हेमंत कुमार ने इंजीनियरिंग करने के लिए जादवपुर स्थित बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और फैसला किया कि वो अपना करियर संगीत के क्षेत्र में ही बनाएंगे। और 1930 के दशक के अंत तक उन्होंने खुद को पूरी तरह से संगीत के लिए समर्पित कर दिया।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, हेमंत कुमार ने पार्श्व गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत सन 1940 में बंगाली फिल्म राजकुमार निर्वासन से की, जिसमें उन्होंने मशहूर संगीतकार एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में कई गीत गाए। हेमंत कुमार ने रविंद्र संगीत के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई और अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस शैली में उनका पहला गाना रिकॉर्ड किया गया बंगाली फिल्म प्रिया बांधवी के लिए। सन 1940 के दशक में ही हेमंत कुमार इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से सक्रिय रूप से जुड़ गए, जहां उन्होंने अपने साथी सदस्य और संगीतकार सलील चौधरी के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग स्थापित किया। सलील चौधरी द्वारा रचित और लिखित उनके गीत गायनेर बधू यानी ग्रामीण दुल्हन की रिकॉर्डिंग हेमंत कुमार के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।
2: नजरों से कहे।

सन 1950 के आते आते हेमंत कुमार बंगाली सिनेमा में एक मशहूर पार्श्व गायक और मशहूर संगीतकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इसके बाद मशहूर फिल्म निर्देशक हेमेन गुप्ता ने अपनी फिल्म आनंद मठ के लिए संगीत के रूप में एक संगीतकार के लिए हेमंत कुमार को निमंत्रण दिया और उनके कहने पर सन 1951 में हेमंत कुमार मुंबई चले आए और फिल्मिस्तान स्टूडियो में शामिल हो गए। हेमंत कुमार ने फिल्मिस्तान में कई अन्य प्रोडक्शन के लिए भी काम किया, उन्हें संगीत भी दिया और 1952 में आई फिल्म आनंद मठ का गीत वंदे मातरम तो हेमंत कुमार के संगीत की एक अनुपम सौगात है। हेमंत कुमार ने इसे एक जोशीली युद्ध धुन में ढाला था और इस गीत को आवाज दी थी लता मंगेशकर ने।

0: हेमंत कुमार जहां एक तरफ मशहूर संगीतकार के रूप में अपनी एक अनूठी छवि बना चुके थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पार्श्व गायक के रूप में भी अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ती है। हेमंत कुमार अपने समय के कई मशहूर अभिनेताओं की आवाज बने, जिसमें देवानंद, सुनील दत्त, प्रदीप कुमार, विश्वजीत, धर्मेंद्र आदि शामिल हैं। हेमंत कुमार ने सन 1950 के दशक में ही अपने स्वयं के बैनर तले फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। उन्होंने हेमंत बेला प्रोडक्शंस की नींव रखी और अपनी पहली फिल्म बनाई नील आकाशेर नीचे। ये बंगाली फिल्म थी जो कोलकाता के एक चीनी स्ट्रीट हॉकर के संघर्षों पर आधारित थी और इस फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक भी मिला।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे पास

0: लोगों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक हेमंत कुमार के बारे में। दोस्तों, बात करें हेमंत कुमार की उपलब्धियों की तो उसकी एक लंबी कतार है। हेमंत कुमार को सन 1956 में फिल्म नागिन के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेमंत कुमार द्वारा बनाई गई फिल्म नागिन की धुन इतनी मशहूर है जो आज भी आपको किसी न किसी छोटे बड़े प्रोग्राम में जरूर सुनाई पड़ जाएगी।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यम

इसके बाद हेमंत कुमार को सन 1971 में फिल्म निमंत्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। सन 1986 में उन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और सन 1988 में कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद डी लिट की उपाधि भी प्रदान की गई। हेमंत कुमार को पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया। हेमंत कुमार को मरणोपरांत भी बांग्लादेश मुक्ति युद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया था।

में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आसन 2026 जून महीने की 16 तारीख और दिन है मंगलवार। श्रोताओं, आकाशवाणी के तवंग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगे समूह, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री हेमंता स्वर्गीय और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री अमोल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक श्री लोफसंग तोप्तन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशि ओमो। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: 20 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले डिजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं, तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां

0: लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
2: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवास

0: शासकीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्यभर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोता भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार तत्पश्चात हिंदी में समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं लामा तोप्तन वंगचू और साथियों से बोध भक्ति गीत। तो लीजिए पेश कार्यक्रम वंदना।

श्रोता भी आप सुन रहे थे लामा थुप्तन वांगचोर साथियों से बोध भक्ति गीत। इन्हीं बोध भक्ति गीतों के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना भी पर समाप्त होता है। मीडियम एफ के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं

इस योद्धा बानली रीति जुवेन गर्ग और अंगारक के सुरों में चंद असमय नगमे आइए आनंद लेते हैं मधुस्मिता भट्टाचार्य और पपुन के सुरों में चंद असमय नगमे।

0: शोथोभ्या ले रहे थे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत जुवेन गर्ग और अंगारक के स्वर में चंद असमिया नगमे। तत्पश्चात आप सुन रहे थे मधुस्मिता भट्टाचार्य और पपोन के स्वरों में चंद असमिया नगमे। इन्हीं नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात में आइए सुनते हैं दोरजी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवंग के 5th सेमेस्टर के कुमारी छुमी लामो से डर पर काबू पाना और आत्मविश्वास बनना विषय पर दिए गए संदेश।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात सुन रहे आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं कुमारी छुमी लमो दोरजी खंडू राजकीय महाविद्यालय तवांग की 5वीं सत्र की छात्रा आज आप सभी के समक्ष डर पर विजय और आत्मविश्वासी बनना विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ा शिक्षक भी। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई भय होता है। असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर या फिर अपने सपनों तक न पहुंच पाने का डर। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसने भी जीवन में कुछ बड़ा किया है उसने पहले अपने

0: डर को हराया है। आज के आधुनिक समय में युवाओं के डर का रूप बदल चुका है। अब सिर्फ परीक्षा या नौकरी का डर नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा न होना, दूसरों से तुलना, ऑनलाइन जजमेंट, सोशल मीडिया का प्रेशर और लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़े डर बन गए हैं। इंस्टाग्राम और रील्स की दुनिया में हर कोई अपनी लाइफ का सिर्फ परफेक्ट हिस्सा दिखाते हैं, जिससे युवाओं को लगता है कि वे दूसरों से कम है। लेकिन असल आत्मविश्वास लाइक्स या फॉलोवर्स से नहीं, बल्कि अपने आप पर विश्वास करने से आता है। डर पर विजय पाने का पहला कदम है डर को स्वीकार करना। बहादुर वही है जो डरता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। दूसरा कदम है छोटे छोटे कदम उठाना। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन रोज के छोटे प्रयास हमें बड़ा बना देते हैं। जैसे कोई छात्र पब्लिक स्पीकिंग से डरता है तो उसे पहले दो लोगों के सामने बोलना चाहिए, फिर धीरे धीरे एक बड़े समूह के सामने। तीसरा तरीका है नकारात्मक सोच को बदलना। मैं नहीं कर सकता आपको रोकता है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ आपको आगे बढ़ाता है। चौथा तरीका है दूसरों से तुलना बंद करना, क्योंकि तुलना करने से केवल प्रेरणा नहीं, कई बार निराशा और डर पैदा होता है। डर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर इंसान की यात्रा अलग होती है और आपकी कहानी आपके हिसाब से खास है। पांचवा और सबसे जरूरी तरीका है असफलता को अंत नहीं, अनुभव मानना। आज के समय में कई यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर या स्टार्टअप फाउंडर्स शुरू में असफल होते हैं। उनकी पहली वीडियो पर मुश्किल से कुछ ही व्यूज आते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। असफलता से सीखकर जब वे आगे बढ़ते हैं, तभी सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। सकारात्मक माहौल और सही लोगों का साथ भी आत्मविश्वास को मजबूत करता है। यदि हम उन लोगों से घिरे रहते हैं जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं या हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो हमारे हौसले बढ़ाए, हमारी कोशिश की कद्र करें और मुश्किल समय में हमारा साथ दें। आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं वह दूसरों से कम न रह जाए। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। अंत में डर हमें रोकता है, लेकिन आत्मविश्वास हमें ऊपर उठाता है। जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, दूसरों से तुलना छोड़ देते हैं और असफलताओं को सीख की तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने डर के पार जाएं, क्योंकि वही हमारी असली पहचान और सफलता छिपी होती है। बस एक कदम भरोसे का उठाइए, बाकी रास्ता आत्मविश्वास खुद बना देगा। धन्यवाद।
1: श्रोता, आपने सुना दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के फिफ्थ सेमेस्टर के कुमारी चुमी लामू से डर पर काबू पाना और आत्मविश्वास बनना विषय पर दिए गए संदेश। श्रोता जी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अभी पर समाप्त हुआ। मीडियम के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:35 हुए हैं और अब प्रस्तुत है मैला पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम को आरंभ करते हुए पहला नगमा ये सुनते हैं फिल्म सम्राट फ्रिटफ्रिराजते सुनिधि चौहान के स्वर में। इस गीत के गीतकार है वरुण गोवर तथा संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

विशुद्ध व्यापन अंतलिया नीरज श्रीधर की आवाज में तुम मेरे फम से ये खूबसूरत गीत, इस गीत के गीतकार थे कुमार तथा संगीतकार थे प्रीतम। श्रोतों कार्यक्रम का अंतिम नगमा यान लेते हैं एक दीवाना था फम से लियोन डिसोजा और सुजेन डीमेलो के युगल आवाजों में। जावेद अख्तर की रचित गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

Jordan Lison, Leon D'Souza और सुजैन डीमेलो की गायफ एक दीवाना था किसी नगमे के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और FM 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। लीजिए शोध और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा ये सुनते हैं फिल्म बजरंगी भाईजान से जुबेन नौटियाल की आवाज में। शफरचना नीलेश मिश्रा के है तथा धुन प्रीतम का।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और FM 104 MHz पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 6:11 हुए हैं। डीजी श्रोता प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा से पहले ये सुनते हैं एक जरूरी सूचना। पुलिस अधीक्षक तवांग के कार्यालय से प्राप्त यातायात सलानुसार तवांग जिले में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और बाजार क्षेत्र में सड़क जाम और पर्यटक वाहनों यात्रियों बसों स्थानीय टैक्सियों और बोलेरो पिकअपों की अव्यवस्थित पार्किंग के कारण यातायात के सुचारू प्रबंध के लिए तवांग टाउनशिप क्षेत्र में वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु यातायात नियम कुछ इस प्रकार की है। बाजार क्षेत्र में पर्यटक वाहनों जैसे बसों और पर्यटक टैक्सियों जैसे फोर्स ट्रेवलर या किसी भी अन्य बहुउद्देश्य वाहनों के पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। बाजार के लिए यात्रियों को लाने ले जाने का कार्य केवल निर्धारित स्थानों से ही किया जाएगा। बाजार क्षेत्र में स्थानीय टैक्सियों और बोलेरो पिकअप्स की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। सभी सार्वजनिक बड़ी और निजी वाहनों को बाजार क्षेत्र में पार्किंग ना करने की सलाह दी जाती है। डबल पार्किंग न्यू मार्केट, ओल्ड मार्केट, न्यू मार्केट और डाउनटाउन मार्केट क्षेत्र जैसे बाजार क्षेत्रों में डबल पार्किंग सख्त रूप से प्रतिबंध है और

वाहनकर्ताओं पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। बाजार क्षेत्र में लोडिंग और अनलोडिंग गतिविधियां कुछ इस प्रकार होगी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही प्रवेश की अनुमति होगी। सुबह 7 बजे के बाद भारी वाहनों जैसे बस, ट्रक और डंपर्स को तवांग टाउनशिप क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। सभी पर्यटक वाहनों को जनरल परेड ग्राउंड में निर्धारित पार्किंग स्थल पर या वॉक थ्रू मार्केट तवांग में सुशुल्क पार्किंग क्षेत्र में पार्क करनी होगी। स्थानीय टैक्सियां अपने वाहन होटल कोरिचन के पीछे स्थित निर्दिष्ट टैक्सी स्टैंड, जो स्थानीय सब्जी विक्रेताओं के बाजार के पास है, वही पार्किंग करनी होगी। तवांग के आम नागरिकों को सलाह का सख्ती से पालन करना चाहिए। तवांग पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, यातायात प्रभारी और सभी यातायात पुलिस कर्मियों को इस सलाह का सख्ती से पालन करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानून के अनुसार उचित जुर्माना लगाया जाएगा। सूचना समाप्त हुआ। श्रोतों, कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक श्रीदंडरी में लामा रंजन सेवांग गेलो चंपा तेंदर और लामा नीमा सिंह से गंजक सुम्पा और लामा छेपा सोकुर। आज शाम 7 सुनेगा हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज हम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम आज की कविता। आज हम 7:11 पर सुनेगा कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आह्वान ले सकेंगे फिल्म अनारी से चंद नगमे। आज हम 7:25 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। आज शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत फिल्म दिल जले से। आज रात 8 का समय रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर। रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। आज रात्रि 9:15 पर कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये तो थी आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोताओं, अब हम आपको कल यानी 17 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा कल का सवा आरंभ होंगे कल दोपहर 2 मीटी न्यूज के तहत। कल दोपहर 2:15 पर सुनेगा हिंदी में समाचार। कल दोपहर 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम वंदना में पंडित जसराज के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3 आप आनंद ले सकेंगे पपून की आवाज में चंद असमय नगमे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात में महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है विषय पर तुलसीखाना गवर्नमेंट कॉलेज तवांग की मिस फिफ्थ सेमेस्टर की मिस मीना रत्ना से संदेश। कल दोपहर 3:33 पर सुनेगा महिला पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कल दोपहर 3:50 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कल संध्या 4:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम राग रंग में

रानू मजुमदार से बांसुरी वादन। कल शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे रोजाना की तरह मनपा कार्यक्रम में नामदर लेरिंग। 5:30 पर सुनेगा दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री तुप्तन ताजी से। 5:35 पर सुनेगा नमुचुए क्लब। 6 बजे लेरिम सेरा 6:10 पर कार्यक्रम चरोखा। कल शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक शेदन लेरिम में लामा मेटो ताशी और साथियों से गंचक सुनपा थपकी तुझे मा और लामा

पांच बज के 30 मिनट पर सुनेगा दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री तुपतन ताजी से। 5:35 पर सुनेगा नंगछुई क्लब। 6 बजे लेरिम सेरा। 6:10 पर कार्यक्रम चरोखा। कल शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक शेदन लेरिम में लामा मेटो ताशी और साथियों से गंचक सोनपा थपकी तुजेमा और लामा चेपक सोकर। कल शाम 7 बजे हिंदी में समाचार तथा 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर आप आने ले सकेंगे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर सुनेगा स्वदेश फिल्म से एक देशभक्ति गीत। कल रात 8 बजे का समय रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। कल रात 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। कल रात 9:15 पर अगले दिन प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूचना दी जाएगी। कल रात्रि 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोता यह थी आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम चरोखा समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा मोनपा में। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: 天波地波罗悉波悉天悉波悉波度波诃罗悉波那
1: 那咪波
0: 萨那咪那揭谛波三揭谛。

Yelan yelan,

0: Langinangstada, Lunting, Tawang, Nomingodun, Chindun Lirima, Lama Rinjin Sewang, Kelong Chambatender, Nin Lama Nimusring Si, Tono Kinchak Sumba, Nin Lama Chebo, Sawars and Nombor, Langinau Deba Lunting, Tawang, Tishnu Dugmon Baglirimbana, Chazan Dudur, Langi Saman Dutsu and Sondur, Langinada Shuje, Nahindiga Sigin Shuje, Injiga Sigur, Lunting,
1: Akashwani Samajar Kizat, my Munish Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार सातवीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने

0: adopted on the 8th of June this year, following the memorandum of cooperation signed between the two countries last year for the JCM. The mechanism provides a framework for collaboration on mitigation projects that reduce or remove greenhouse gas emissions while supporting sustainable development in India. West Bengal Chief Minister Shubhendu Odhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles EFR will soon be revived, with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally at Kursiong in Darjeeling, Mr. Odhikari paid tribute to the valour and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. Mr. Odhikari further announced that recruitment to the state police force would soon be opened, creating employment opportunities for a large number of Gorkha youths. He added that at least 30% of seats in state recruitment would be reserved for women. In the FIFA World Cup, France will take on Senegal in a Group I clash at New Jersey in the United States at 12:30 a.m. according to Indian Standard Time. In another fixture, Norway will face Iraq in a Group I encounter at the Boston Stadium. The match will kick off at 3:30 a.m. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं भी अब सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार। मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की कविता। कार्यक्रम आज की कविता में आइए सुनते हैं मोन्यूल विद्या निकेतन स्कूल तवांग के 5वीं कक्षा के छात्र रिंजन डोका से एक कविता। कविता का शीर्षक है कौन।
2: दिल्ली आप सभी को, मेरा नाम रिजिन डोका है और मैं कक्षा 5वीं पर पढ़ती हूँ और मेरा विद्यालय का नाम मोन्यूल विद्या निकेतन है और मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। और मेरा कविता का शिक्षक है कौन, किसने बटन हमारे कुटे, किसने शाही को बिखराया, कौन चाट कर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोनों खाली रहा गया, कौन उठा ले गया मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गयी, किसने रस्सी काट बहाई, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। सोहन लाल द्विवेदी। धन्यवाद आप सभी को।
1: श्रोताओं भी आपने सुना मोन्यूल विद्या निकेतन स्कूल तवांग के 5वीं कक्षा के छात्र रिंजन डोका से कविता। कविता का शीर्षक था कौन। श्रोताओं के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता समाप्त हुआ। आपके सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय शाम के 7:11 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से के अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे फिल्म अनारी से चंद नगमे। तो ये कार्यक्रम का पहला नगमा ये सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में।

0: श्रोताओं, उदित नारायण और साधना सरगम के गायब अनारकी से नगमे के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:30 हुए है। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं दैनिक जीवन में योग का महत्व विषय पर योगा इंस्ट्रक्टर कुमारी के संग थामो से पेट वार्ता। उनसे भेंट करता है दुर्जी डोलमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी तवांग से प्रसारित विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, आपको जरूर जानकारी होगी, हम हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे दैनिक जीवन में योग कितने महत्वपूर्ण है और योगा की विशेषताएं के बारे में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में उपस्थित है एक योगा टीचर केसांग लामू। तो केसांग लामू, सबसे पहले आपका हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू एंटेशी डेलेग। कार्यक्रम सुनने वाले सभी को सबसे पहले मैं आकाशवाणी तवांग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।
1: धन्यवाद आपका भी। तो केसांग लामू, हम योग की महत्व पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने योग क्यों सीखा, योग करने की विचार आपको कहाँ से आया, क्यों जरूरी लगा आपको?
2: एक्चुअली मुझे बचपन से ही योगा करना बहुत अच्छा लगता था, योगा मेरा हॉबी है। लेकिन उस समय पे मैं काफी छोटी थी, तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करनी थी। तो स्टडी कंप्लीट की, मैंने बीकॉम किया है और बीएड भी किया है। तो बीएड करते करते मैंने डिसाइड कर लिया है कि योगा क्लास भी ज्वाइन कर लूं। योगा मेरा हॉबी तो था ही, साथ में मेरा छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत होते थे। योगा करते करते मुझे अपने आप में बहुत हेल्थ इम्प्रूवमेंट नजर आया, इसलिए मैं योगा करके बहुत सेटिस्फाइड हूँ।
1: और हम ये जानना चाहेंगे कि आपने योगा सीखा कहाँ से, कोर्स कहाँ से किया?
2: जी, मैंने गुवाहाटी से की है। इंस्टीट्यूशन का नाम है अरुणिमा दत्ता योगा स्टूडियो, जो असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और मुझे योगा करते हुए लगभग 4 साल हुआ है। मुझे योगा करते करते अपने आप में बहुत हेल्थ इम्प्रूवमेंट नजर आया और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना योगा टीचर कोर्स कर लूं, ताकि दूसरों को भी सिखा सकूं। तो मैंने योगा टीचर का कोर्स किया और आज मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूं। तो मैंने जहां से मेरा कोर्स किया है, आज मैं वही इंस्टीट्यूशन में योगा इंस्ट्रक्शन भी कर रही हूँ।
1: तो केसांग लामू, हमारा आज का ये चर्चा जो है मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम करने वाले हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे कारण क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी?
2: देखिए, योगा करने से आपको अनकाउंटेबल हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप जीवन में अच्छे काम कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए सरकार ने इंटरनेशनल योगा डे हर साल मनाने की घोषणा की है। और इसकी शुरुआत हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2014 के 11 दिसंबर को ही घोषणा किया था। और 2015 के 21 जून से हर साल इंटरनेशनल योगा डे दुनिया भर में मनाते हैं। योगा हमारे भारत के लिए कोई नया नहीं है। योगा का ओरिजिन कंट्री ही हमारे देश भारत है, लेकिन आज दुनिया भर में लोग योगा के बारे में जानते हैं और योगा प्रैक्टिस करते हैं। और इस दिन को मनाने के लिए 21 जून को ही क्यों चुना? क्योंकि आप सभी को पता है 21 जून जो साल का सबसे लंबा दिन होता है, यानी कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। और हम भी योगा करके हेल्थी रहें और इस दिन की तरह लंबी उम्र जिए।
1: तो श्रोताओं, जैसा कि मैंने पहले आपको इनके बारे में बताया कि केसांग लामू एक सर्टिफाइड योगा टीचर है, तो हम इनसे आइए जानते हैं कि योगा हमारे दैनिक जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, योगा की क्या विशेषता है, आप हमारे श्रोताओं को बताएं।

0: जी, योगा हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। योगा करने से हमारे शरीर को बहुत सारे अनकाउंटेबल हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है। दिमाग को शांत रखने में मदद करता है और स्ट्रेस रिलीफ करने में भी हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, वेट को कंट्रोल करता है, शरीर में थकान दूर करता है। कुल मिलाकर आप एक हेल्थी लाइफ जी पाएंगे, इसलिए योगा हमारे डेली लाइफ में जरूरी है।
1: जी, आपने बताया योगा हमारे दैनिक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होते हैं, योगा की विशेषता क्या है, और हम आगे जानना चाहेंगे क्योंकि इस समय हमारे साथ बहुत श्रोताएं हमारे जुड़े हुए हैं और बहुत लोग ऐसा भी होंगे जिसको योगा के बारे में पता नहीं होंगे, योगा का मतलब क्या होता है। तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि योगा का मतलब क्या होता है, योग क्यों कहते हैं इसे।
0: योगा एक संस्कृत वर्ड है जहाँ यूज का मतलब है यूनाइटेड, जिसका बेसिक मीनिंग है बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को कनेक्टेड रखते हैं। और योगा के अंदर 8 मेन लिम्स होते हैं।
1: अच्छा, आपके कहने का मतलब है 8 मुख्य लिम्स होते हैं, है ना।
0: इसका मतलब है 8 नियमों को पालन करना होता है, जैसे यमा मतलब सेल्फ कंट्रोल, नियमा मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, आसना मतलब फिजिकल पोस्चर्स, और प्राणायामा मतलब ब्रीथिंग टेक्निक, और प्रत्याहारा मतलब डिसएसोसिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट, धारा मतलब मेडिटेशन, एंड ध्याना मतलब कंसंट्रेशन, एंड लास्ट समाधि मतलब आइडेंटिफिकेशन विद प्योर कॉन्शियसनेस। ये है 8 लिम्स ऑफ योगा।
1: जी, तो आपने बताया कि योगा के अंदर 8 मुख्य लिम्ब होते हैं जहाँ हर एक लिम्ब का अपनी एक विशेषता होता है, अपनी एक यूनिक नियम होता है। तो योगा करने के लिए इन 8 लिम्बों का हर एक विशेषता और नियम का पालन करना होता है ना। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे, देखिए अभी हम तवांग का ही बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आम समस्याएं देखने को मिलता है जहाँ लोगों को गैस्ट्राइटिस होता है, हाइपरटेंशन होता है, माइग्रेन होता है, डायबिटीज होता है। तो इन सब समस्याओं के कारण क्या हमारे खान पान की वजह से होते हैं या कोई अलग कारण हो सकते हैं, आप बताइए क्या इन समस्याओं के लिए कोई योग आसन होते हैं? होते हैं तो किस तरह से परफॉर्म करना है।
0: जी बिल्कुल होता है, लेकिन केवल खान पान को हम ब्लेम नहीं कर सकता है, उसके अलग रीजन भी हो सकता है, जैसे जीन्स, अपने पेरेंट्स जेनेटिक्स पे भी गया हो सकता है। लेकिन इसके लिए बिल्कुल सोल्यूशन है योग आसन में। मैं सबसे पहले गैस्ट्राइटिस के लिए योग आसन क्या है बताना चाहूंगी, जो है वज्रासना, डायमंड पोज। तो उसको परफॉर्म करने का तरीका ऐसा है कि घुटने के बल बैठना है और अपने बैकबोन स्ट्रेट रख के, और आप इनहेल करके सांस को अंदर लेते हुए आप नॉर्मल ब्रीथिंग में मिनिमम 10 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। तो आप उसको रिपीट 5-6 राउंड्स तक कर सकते हैं 10-10 सेकंड करके। और भी बहुत सारे आसनास भी है और प्राणायाम भी है, लेकिन हमारे पास समय इतना नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। माइग्रेन के लिए योग आसन भी है और प्राणायाम भी है। मैं प्राणायाम को सजेस्ट करना चाहूंगी, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को परफॉर्म इस तरह से किया जाता है कि आप एक जगह पर बैठ जाना है, आराम से बैठ जाना है, और आपका राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बना के परफॉर्म करना है। विष्णु मुद्रा जो आपका रिंग फिंगर और थंब का हेल्प से, लेफ्ट नोस्टिल से सांस अंदर की तरफ लेना है और राइट से छोड़ना है, और अगेन राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। मिनिमम 10 राउंड्स का परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप हो सके तो 20-30 कर सकते हैं। तो अगर आपका बीपी हाई हो तो मैं प्राणायाम को सजेस्ट करना चाहूंगी, वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। तो हाइपरटेंशन और हाई बीपी वालों को अपना ब्रीथिंग को बिल्कुल होल्ड नहीं करना है। परफॉर्म करने का तरीका ये है कि अपना राइट हैंड फिंगर्स को विष्णु मुद्रा बनाना है और थंब से बंद करके लेफ्ट से लेना है और आराम से राइट से छोड़ना है। अगेन आपको लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। तो आप उसमें अल्टरनेट ब्रीथिंग नहीं करना है, उसको भी मिनिमम 10 राउंड्स कर सकता है। अगर आपको माइग्रेन हो तो आपको प्राणायाम करना है, और प्राणायाम जो अनुलोम विलोम कर सकता है, लेकिन ये भ्रामरी जो बेस्ट है। तो मैं भ्रामरी के बारे में बताना चाहूंगी। भ्रामरी को हमिंग बी ब्रीथिंग भी बोलता है। आपका कान को बंद रखना है आपका फिंगर टिप्स का हेल्प से, आपको बिल्कुल भी बाहर का साउंड को सुनाई नहीं देना चाहिए, और आपका मुंह भी बंद करके और अपना टीथ को भी क्लोज करके और जीभ को ढीला छोड़ देना है, और आप ऐसे एक आवाज करना है, सांस इनहेल करके करके, तो उसको आप मिनिमम 10 राउंड्स कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज हुआ हो तो मैं कपालभाति क्रिया या प्राणायाम को सजेस्ट करना चाहूंगी। कपालभाति प्राणायाम को परफॉर्म करने का तरीका ऐसा है, आप आराम से पेट जाना है और आप नाक से सांस छोड़ना है, पेट से जोर लगाते हुए आप मिनिमम 60 सेकेंड्स करना है। तो अगर आप कर सकते तो 2-3 मिनट कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। और उसके अलावा आप आसना भी कर सकते हैं डायबिटीज के लिए। अगर सूर्य

0: नमस्कार जानते हैं तो आप सूर्य नमस्कार प्रॉपर ब्रीथिंग टेक्निक के साथ कीजिएगा। मिनिमम आप 12 राउंड कीजिएगा। आप जितना कर सकते उतना आपके लिए अच्छा है। प्राणायाम करने का भी 3 चरण होता है। नंबर 1 पुरखा, उसका मतलब है इनहेलेशन या ब्रीथ इन। नंबर 2 कुंभका, और उसका मतलब है रिटेंशन और होल्डिंग। और नंबर 3 रिचाका, उसका मतलब है एक्सेलेशन और ब्रीथ आउट। तो आपको ये 3 स्टेजेस को अच्छी तरह से फॉलो करना होता है।
1: आपने बताया कि जिनको डायबिटीज हुआ हो, जिनको हाइपरटेंशन हुआ हो, माइग्रेन हुआ हो या कुछ अन्य समस्या हो रही है, तो इन सारे प्राणायाम या क्रियाओं को कर सकते हैं जिससे आपको फायदा हो सकते हैं, है ना। और आजकल डिजिटल का जमाना है, हर काम डिजिटली होता है। हम कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए सारे काम करते हैं। थोड़ा सा फ्री होता है तो हम तब भी स्क्रीन ही देखते हैं, तो स्क्रीन देखने की वजह से हमारे आंखों को बहुत प्रभाव पड़ती है और साथ साथ नेक पेन, बैक पेन बहुत होता है। तो इन सारे समस्याओं के लिए क्या कोई योग आसन है?
0: जी बिल्कुल होता है। तो आप सबसे पहले तो मैं आंख का योगा बताना चाहूंगी। तो उसको सिंपल आई एक्सरसाइज बोलते हैं। एक जगह में बैठ के अपने नेक को सीधा रखते हुए आप अपने आई बॉल्स को ऊपर की तरफ देखना है और उसको 10 सेकंड्स तक होल्ड करना है, और फिर नीचे की तरफ देखना है, फिर 10 सेकंड्स होल्ड करना है, फिर राइट की तरफ देखना है, आई बॉल्स को घुमाना है राइट की तरफ, 10 सेकंड्स होल्ड कीजिए, और आप लेफ्ट की तरफ घुमा के 10 सेकंड्स होल्ड कीजिए। ये 4 होने के बाद आपका आई बॉल्स को राइट साइड से आप रोटेशन कर सकते हैं 10 सेकंड्स तक, और आप से रोटेशन कर सकते हैं। तो लास्ट में आप आंखों को आराम से बंद कीजिए और आराम से खोलिए।
1: तो इसके लिए क्या कोई प्रॉपर टाइमिंग होता है, कब करनी चाहिए?
0: इसका एक्चुअली टाइमिंग नहीं है। आप जब स्क्रीन देखिएगा तो आप ऑफिस हो या घर में, आप अगर आंखों को प्रॉब्लम का महसूस हो रहे तो आप अपना स्क्रीन को थोड़ा देर के लिए छोड़ के आपको इसका प्रयास कर सकते हैं।
1: और नेक पेन के लिए क्या आप योगा एक्सरसाइज बताएंगे?
0: जी इसके लिए भी नेक एक्सरसाइज है। तो अपना नेक को राइट की तरफ घुमा के इनहेल करते हुए राइट तरफ घुमा के स्टे कर सकते हैं 10 सेकंड्स मिनिमम, और सेम इनहेल करके एक्सहेल करके 10 सेकंड्स तक लेफ्ट की तरफ होल्ड कर सकते हैं। और 2 स्टेप्स होने के बाद अपने नेक को आप राइट साइड से इनहेल करते हुए घुमाएगा पीछे की तरफ और छोड़ेगा लेफ्ट की तरफ एक्सहेल करते हुए, फिर आप वहां से ऑपोजिट साइड से घुमाइए इनहेल करके और एक्सहेल करके राइट साइड की तरफ छोड़िए। तो इसको आप 10 राउंड कीजिए, हो सके तो उससे भी 20-30 राउंड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप ऑफिस में भी कर सकते और अपना घर में भी कर सकते।
1: ठीक है, जब भी आपको थकान महसूस होता है या आपके नेक या बैक पेन जब भी होता है तो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं ना। और हमारे आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में वजन बढ़ना जो है बहुत बड़ी समस्या है। लोग काफी वजन बढ़ने की वजह से परेशान रहते हैं, तो क्या वजन घटाने के लिए कोई योग आसन होता है? होता है तो किस तरह से हम उसे परफॉर्म करेंगे?
0: एक्चुअली योगा तो आपको फिटनेस के लिए तो काम करते ही है, लेकिन उसके लिए फिर स्पेसिफिक एक आसना को मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, वो है नवा आसना। इंग्लिश में उसको बोर्ड पोज भी कहते हैं। तो उसका परफॉर्म करने का तरीका ऐसे है कि आप एक जगह में आप पीठ के बल लेट जाइए और पैरों को उठाइए 45 डिग्री में और या 60 डिग्री में, आप जितना आपका कैपेसिटी है अपने पीठ को उठाइए और अपने हाथों को स्ट्रेट अपने आगे की तरफ रखिए। तो उसको देखने में नाव की तरह देखते हैं। आप उसको भी मिनिमम 10 सेकंड्स होल्ड कीजिए, तो हो सके तो आप 2-3 मिनट तक होल्ड कीजिए, आपका बेली फैट को घटाने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप ऐसा भी नहीं है कि आप योगा करेगा तो आप डाइट मेंटेन नहीं करेगा, आप बाहर का जंक खाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वजन तो घटते रहेगा योगा करने से, ऐसा नहीं है। आप हो सके तो बाहर का खाना को अवॉइड कीजिए और घर का ही खाना खाइएगा, उससे आपका वजन बहुत हद तक कंट्रोल होगा। अगर आप वैसे योगा करते हैं तो आपके बॉडी का सिर से पैर तक हर पार्ट्स में फायदा होगा, लेकिन आपको उसके लिए सही टेक्निक से करना जरूरी है।
1: बिल्कुल, योगा करने का अनगिनत फायदा हमें मिलते हैं। और लेकिन ये भी तो जरूरी होता होगा कि इसका कोई प्रॉपर टाइमिंग मेंटेन करना, तो प्रॉपर टाइमिंग कब करना होता है, सुबह करना है या शाम को करना है?
0: एक्चुअली तो आप सुबह और शाम दोनों में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम है सुबह को ही आप करने का कोशिश कीजिएगा, सुबह को खाली पेट में ही करने का कोशिश कीजिएगा। जब आप मॉर्निंग को योगा करते हैं तो आप सनराइज जहां से निकलते उस तरफ फेस करके कीजिएगा, और जब आप इवनिंग को करते हैं तो आप सनसेट की तरफ फेस करके योगा कीजिएगा।
1: योगा करने के लिए क्या कोई उम्र की सीमा होते हैं? बच्चे कितनी उम्र से कर सकते हैं योगा, और बुजुर्ग कितने उम्र तक कर सकते हैं?
0: एक्चुअली योगा करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है, लेकिन 65 इयर्स के ऊपर बुजुर्ग के लिए अलग से स्पेसिफिक योगा होता है, उसको प्रयास कर सकते हैं। और

0: और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी अलग से स्पेसिफिक योगा होता है, और खास करके महिलाओं जब पीरियड्स होता है उसके लिए भी।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे दैनिक जीवन में योग का महत्व विषय पर योगा इंस्ट्रक्टर कुमारी के संग आमो से हुई भेंटवार्ता। उनसे भेंट करता थी दुर्जी ट्रमा। श्रोता, इसी के साथ ही कार्यक्रम अपने दर्दी अपने लोग अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित अब से कुछ ही पलों में, यानी शाम 7:45 पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 7:50 पर सुनेगा रीजनल न्यूज। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
2: जाके नहाना नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए 15 मिनट जैसे, इसके बाद आप नहा सकते हैं।
3: कंसेंट्रेशन जो है बहुत जरूरी होता है, हमें किसी भी काम में किसी भी चीज में कंसेंट्रेट करना। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे ध्यान जो बहुत जल्दी नहीं लगता है, बड़ों को काम में ध्यान नहीं लग पाता है, तो बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान या कंसेंट्रेट करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या योग आसन बताना चाहेंगे?
0: देखिए, इमीडिएटली तो आप वो योगा आसन
4: प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस के शहर एविया पहुंचे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत और वैश्विक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक अधिक टिकाऊ और समृद्ध विश्व के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक महत्वपूर्ण सुधार पहल के तहत आज राज्य मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापना एवं संचालन सुविधा अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश के बाद विधायी प्रक्रिया के लिए विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उद्यमियों पर नियामकीय बोझ कम करना तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। इसके तहत पात्र MSME इकाइयों को लागू कानूनों एवं नियमों के अधीन स्व घोषणा प्रणाली के माध्यम से अपना संचालन शुरू करने की सुविधा मिलेगी। मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश भूमि निपटान एवं अभिलेख नियम APLSR 2012 में संशोधन की भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उपयोगी संबंधी नियमों को सरल बनाना तथा भूमि मालिकों और किसानों को आने वाली प्रक्रिया बाधाओं को दूर करना है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित मास्टर प्लान क्षेत्रों में आने वाली कृषि भूमि को बिना अलग अनुमति लिए स्वतः ही मास्टर प्लान के निर्धारण भूमि उपयोग के अनुरूप परिवर्तित माना जाएगा। इन सुधारों से नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलने के साथ साथ नागरिकों की अवधि भी कम होने की उम्मीद है। भर्ती परीक्षाओं में हुई देरी से प्रभावित अभिभावकों के कठिनाइयों के लिए देखते हुए मंत्रिमंडल ने वन टाइम अपर एज लिमिट में छूट को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाने की मंजूरी दी है। ये छूट उन उम्मीदवारों के लिए होगी जिन्होंने वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC द्वारा विज्ञापित भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा आयोजन में देरी के कारण आयु सीमा के तहत अयोग्य हो गए थे। ये निर्णय योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य मंत्रिमंडल ने आज राज्य की प्रमुख योजना शिक्षित भारत से शिक्षित अरुणाचल मिशन की प्रगति की समीक्षा की। इस मिशन के तहत राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अपने इतिहास के सबसे व्यापक सुधार कार्यक्रमों में से एक को लागू किया है। मिशन के प्रथम चरण 2023 से 2026 के दौरान विद्यालय आधारभूत संरचना को मजबूत करने, शिक्षकों की तैनाती, डिजिटल शिक्षा, संस्थागत सुधार तथा शिक्षण परिणामों में सुधार के लिए 3,612.50 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। प्रस्तावित द्वितीय चरण में 1,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश के साथ वर्ष 2029 तक इस मिशन में कुल निवेश 5,100 करोड़ रुपए के अधिक हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की सियांग रिवर राफ्टिंग को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स 2026 में एडवेंचर डेस्टिनेशन श्रेणी में एडिटर्स चॉइस विजेता घोषित किया गया है। पर्यटन राज्य मंत्री पीडी सोना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह सम्मान अरुणाचल पर्यटन के लिए गर्व का क्षण है तथा भारत के प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में राज्य के पार संभावनाओं की पुनः पुष्टि करता है। उन्होंने सभी हितधारकों, स्थानीय समुदायों, पर्यटन पेशेवरों, गाइड्स और साहसिक खेल प्रेमियों को बधाई दी है जो समर्पण और उत्साह के साथ सियांग को बढ़ावा दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 युवाओं लोअर दिबांग वैली जिले के आबिदा बेगम तथा तिराप जिले के ईशा कुमारी साह एवं तावांग आताओ का चयन विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 के राष्ट्रीय चरण में भाग लेने के लिए किया गया है। ये कार्यक्रम 15 से 17 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे हैं।

श्रोताओं, भी आपने सुना कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाजों में एक देशभक्ति गीत फिल्म दिल जले से। इस गीत के गीतकार थे जावेद अख्तर तथा संगीतकार थे अनु मलिक। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं और प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। कार्यक्रम का पहला फरमाइश, आइए सुनते हैं फिल्म नीला आकाश से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल आवाजों में। इस गीत के गीतकार है राजा मेहंदी अली खान तथा संगीतकार है मदन मोहन कौली। इस गीत की फरमाइश की है दादा रंगी पातापरा छत्तीसगढ़ से। आप सब है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है, आप है नीलेश्वर नगर नरवाल महाराष्ट्र से पीएस नरवेकर, निर्मला नरवेकर और विशाल नरवेकर। आप है माला कपूर से नारायण इंगले, सपुन दायदी और आशीष मुरेकर। आप सबके फरमाइश पर आयाना लेते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइश फिल्म कॉपी से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के गीतकार है राजेंद्र कृष्ण तथा संगीतकार है आनंद जी वीरजी शाह तथा कल्याण जी वीरजी शाह।

रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, आपकी फरमाइश पर आनंद लेते हैं कार्यक्रम का। अगला फरमाइश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म आओ मिलो सजना से। इस गीत के गीतकार है आनंद बख्शी तथा संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं समय आप आनंद ले रहे हैं। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए अगला फरमाइश आइए सुनते हैं। मजनू का तिल्ला दिल्ली से आप है कमल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा। साधना मध्य प्रदेश से आप सब है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप सबके पसंद पर अयान लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म इज्जत से मोहम्मद रफी की आवाज में। शाहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम परामर्श आयान लेते हैं सच्चा झूठा फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल आवाजों में। गीत इंदी वर के है तथा संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की हमें फरमाइश प्राप्त हुआ है दवनसार पंजाब से आफ है गगनदीप ठांडी, टिप्टा कुमारी ठांडी, डॉक्टर प्रियंका ठांडी, डॉक्टर प्रशांत ठांडी, डॉक्टर प्रेम ठांडी, बेबी वामिका और वैनी ठांडी।

श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रूमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अब से कुछ ही पलों में, यानी रात्रि 8:30 पर सुनिए गए स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या, तत्पश्चात ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज़ @9। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और श्रोताओं, हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ कार्यक्रम में है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक डिटेल्स के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल आमने सामने, कल खेले गए सभी चार मुकाबले ड्रॉ। भारतीय टीम FIH हॉकी विमेंस नेशन कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। मकाऊ बैडमिंटन ओपन 2026 आज से शुरू हुआ। थरुन मन्नेपल्ली और ईशा रानी बरुआ करेंगे भारतीय चुनौती का नेतृत्व। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम कल अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड से खेलेगी, और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाएगा। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं वायरल फुटबॉल फीवर के साथ, जहां पूरी दुनिया के ऊपर फुटबॉल का ये खुमार सर चढ़ के बोल रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अमेरिका के न्यू जर्सी में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात्रि 12:30 बजे से शुरू होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे के करीब खेला जाना। इससे पहले कल फीफा विश्व कप में कई उलटफेर देखने को मिले। विश्व कप में 68 साल बाद एक ही दिन खेले गए 4 मुकाबले ड्रॉ रहे।
1: फीफा विश्व कप 2026 में कल इस सत्र का सबसे बड़ा उलटफेर देखा गया, जहां केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए विश्व कप की प्रबल दावेदार स्पेन को गोल रहित बराबरी पर रोक दिया, और इस मैच के हीरो केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वो जिन्हा रहे, जो एक ढाल की तरह गोल कोस्ट पर डटे रहे और कई गोल बचा कर टीम की रक्षा की। इस मुकाबले के बाद वो जिन्हा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: आई वर्क ऑल माई लाइफ फॉर दिस मोमेंट फॉर दिस ड्रीम। अ लॉट ऑफ जनरेशन in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team, and now the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot.
1: एक और ड्रॉ मुकाबले ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रही। कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेला गया ये मैच बेहद रोमांचक रहा, जहां न्यूजीलैंड ने एलिजा जेस्ट के 2 गोलों की बदौलत पहले 2-0 की बढ़त बनाई, लेकिन ईरान ने शानदार पलटवार करते हुए 2 गोल दागे और मुकाबले को ड्रॉ करा दिया। दिन का तीसरा ड्रॉ मुकाबला सिएटल स्टेडियम में बेल्जियम और मिस्र के बीच देखने को मिला, जहां कांटे की टक्कर वाला ये मुकाबला 1-1 के बराबरी पर समाप्त हुआ। मिस्र विश्व कप में अपनी पहली जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन बेल्जियम के वैकल्पिक खिलाड़ियों के त्वरित जवाब ने उसे निराश कर दिया। मिस्र के इमाम अशूर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अमेरिका के मियामी स्टेडियम में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच ग्रुप एच का पहला मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। वहीं सऊदी अरब के लिए अब्दुल्लाह अल अमरी ने 41वें मिनट में रिबाउंड पर गोल किया, जबकि उरुग्वे के मैक्सी अराउजे ने 80वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो ये फीफा का मंच है, जहां रोमांच, उम्मीदें, जज्बा और हुनर हर संभावना को नतीजे में बदलने की क्षमता रखता है। और अब US के बाद चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी विमेंस नेशन कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज पूल ए के मुकाबले में जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 4 में जगह पक्की की।
3: It's going to go to core again. It is. And it's there. India have hit the lead.
4: भारत ने पहले ग्रुप मैच में अमेरिका पर मिली रोमांचक जीत का सिलसिला आज ऑकलैंड के नॉर्थ हार्बर नेशनल हॉकी सेंटर में भी जारी रखा, और FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप के अपने दूसरे पूल ए मैच में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कप्तान सलीमा टेटे ने 33वें मिनट और लालरेम सियामी ने 49वें मिनट में भारत के लिए गोल किया। जापान के लिए एकमात्र गोल हिरा मित्सु ए ने 35वें मिनट में किया। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। तीसरे क्वार्टर में भारत ने 33वें मिनट में मिले एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर अपना खाता खोला। नवनीत

0: और के शॉट को निक्की प्रधान ने सलीमा की तरफ धकेला, जिससे कप्तान ने बिना कोई मौका गंवाए गोल पोस्ट में भेजकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके ठीक 2 मिनट बाद जापान की हिरामित्सु ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। मैच के आखिरी क्वार्टर में 49वें मिनट में सुशीला चानू पुखरामबम ने सर्कल के किनारे से गोल की और एक तेज पास दिया, जिसे एक बेहतरीन गोल में बदलते हुए लालरेम सियामी ने भारत को जीत दिलाई। कप्तान सलीम टेटे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम इस जीत के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गई है। भारत के 6 अंक हो गए हैं। भारत अब टूर्नामेंट के अपने आखिरी पूल ए मैच में 18 जून को उरुग्वे से भिड़ेगा। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार खेल से वापस एक बार फॉर्म में वापसी का शंखनाद कर दिया है। और अब बात बैडमिंटन की। मकाऊ बैडमिंटन ओपन 2026 आज से शुरू हो गया है। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा थरुन मन्नेपल्ली और ईशा रानी बरुआ मकाऊ में देश की चुनौती की अगुवाई करेंगे।
2: युवा भारतीय बैडमिंटन टीम मकाऊ ओपन में देश की अगुवाई के लिए तैयार है। आगे आने वाले एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए कई दिग्गज खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता से आराम दिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन में सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी का स्टार जोड़ी शामिल है। इन बड़े खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में टीम का पूरा दाबोदार युवा और उभरते खिलाड़ियों पर है। पिछले साल मकाऊ ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली थरुन मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स टीम की अगुवाई कर रहे हैं। अनुभवी किरण जॉर्ज, ऋत्विक संजीवी और शंकर सुब्रमण्यम भी इस दल का हिस्सा है, जबकि रौनक चौहान ने आज अपने दोनों क्वालिफायर मुकाबले जीतकर मुख्य ड्रॉ जगह बना ली है। महिला सिंगल्स की कमान ईशा रानी बरुआ के हाथ में है, जिन्हें अनमोल खरब और तस्मीन मीर का साथ मिलेगा। आकर्षी कश्यप, रक्षिता रामराज, श्रेयंसी बली शेट्टी, मानसी सिंह, श्रेया लेले और अश्मिता चालिहा भी भारतीय महिला सिंगल्स टीम का हिस्सा है। अगर डबल्स की बात की जाए तो भारत की एकमात्र पुरुष डबल्स जोड़ी और तीनों महिला डबल्स जोड़ी आज पहले ही दौर में बाहर हो गई। मिक्स डबल्स में 5 भारतीय जोड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल है। पीवी सिंधु एकमात्र भारतीय सेटलर है जिन्होंने मकाऊ ओपन जीता है। सिंधु ने लगातार 2013 से 2015 तक लगातार 3 बार ये खिताब जीता था। अमीशा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो नए जज्बे के साथ भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन के कोर्ट पर धमाल मचाने को तैयार हैं। और अब बात की जाती है फिट इंडिया की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल मुंबई के वर्ली सर्किल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि यह आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। मुंबई के सुरमय समुद्र तट के मनोरम दृश्यों के बीच विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 250 साइकिल चालक श्री मांडविया के साथ साइकिल चलाते हुए फिट इंडिया का संदेश देते हुए नजर आएंगे। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी हो जाएगा। और अब बात की जाए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महासंग्राम की, जो कि इंग्लैंड और वेल्स में चल रहा है। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम कल अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है।
3: आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद हरमनप्रीत की विमेंस इन ब्लू के हौसले बुलंद हैं। दूसरे मुकाबले में भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ग्रुप ए का ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से लीड्स के हेडिंगले मैदान में खेला जाएगा। एक तरफ जहां भारत ने 64 रन की विशाल जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है, वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड्स को अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। हरमनप्रीत की आर्मी के लिए इस मैच की राह काफी हद तक आसान नजर आ रही है। पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाली उप कप्तान स्मृति मंधाना से टीम को फिर एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी और टीम को अपनी दूसरी सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा से इस मैच में बड़े स्कोर की चाह रहेगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष की नजर अच्छी शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदलने पर होगी, जबकि पहले मैच में कुछ खास न कर सकी जेमिमा रॉड्रिक्स और भारती फुलमाली नीदरलैंड्स के सामने वापसी करते हुए फॉर्म हासिल करना चाहिए। पहले मैच में अपनी शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान को पस्त करने वाली दीप्ति शर्मा पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जिनको श्री चरणी का भरपूर साथ मिलेगा। अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल भी गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम को मजबूती देती नजर आएंगी। इस दौरान बीसीसीआई ने टीम के लीड्स

0: पहुंचने का एक वीडियो साझा किया। इसमें अपनी साथी अरुंधति रेड्डी के बारे में उप कप्तान स्मृति मंधाना ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: She has that fire in her that she also keeps motivating me to do the right things in terms of my preps and doing the right things on the ground.
0: भारतीय टीम के लिए ये मौका बेंच पर बैठे अपने खिलाड़ियों को आजमाने के लिए भी अच्छा अवसर है। दूसरी तरफ अपना पहला T20 विश्व कप खेल रही नीदरलैंड्स ने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा मुकाबला खेला था, लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा। टीम की उम्मीदों का दारोमदार कप्तान और विकेटकीपर बेबेट डी लीडे के कंधों पर है, जिन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक की पारी खेली थी। उनके अलावा टीम को आयरिस ज्वेलिंग, हेदर सीजर्स, सिल्वर सीजर्स और कैरोलिन डी लैंग से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों का सामना करने से पहले भारतीय टीम की नजर नीदरलैंड्स पर एक बड़ी जीत दर्ज कर ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
2: और हरमनप्रीत की आर्मी के दूसरी तरफ शुभमन गिल एंड ब्रिगेड भी एक ऐसी ही बड़ी जीत की राह में लखनऊ पहुंच चुकी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाना है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम इस श्रृंखला को अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं मेहमान टीम अफगानिस्तान की नजर यह मैच जीतकर श्रृंखला में वापसी करने पर होगी।
3: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे से लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। धर्मशाला में अफगानिस्तान के ऊपर शानदार जीत दर्ज करने के बाद शुभमन गिल की मैन इन ब्लू कल सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और खेल के हर मोर्चे पर मजबूत नजर आ रही है। कप्तान शुभमन गिल का बल्ला IPL के बाद न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच और फिर पहले एक दिवसीय मैच में भी रनों का पहाड़ खड़ा करता नजर आया, जिनको इन फॉर्म KL राहुल का बखूबी साथ मिल रहा है और दोनों खिलाड़ी लगातार रन भी बना रहे हैं। हिटमैन रोहित शर्मा पर भी दर्शकों की नजरें होंगी। रोहित पहले एक दिवसीय मैच में दुर्भाग्यशाली रहे थे और 16 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए थे। पिछले कुछ एक दिवसीय मुकाबले को देखें तो रोहित का बल्ला शांत नजर आया है। ऐसे में 2027 विश्व कप की राह तलाश रहे रोहित शर्मा से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर भी अच्छे फॉर्म में है, जबकि वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों क्षेत्र में मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो धर्मशाला में अपना डेब्यू करने वाले स्पिनर हर्ष दुबे और तेज गेंदबाज गुरनूर बरार से भी टीम को उम्मीदें होंगी, जिन्होंने अपने पहले मैच में 3-3 विकेट चटकाए थे। अर्जदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी में उनका साथ देते दिखेंगे। ये श्रृंखला भारत के लिए 2027 विश्व कप की तैयारियों की शुरुआत मानी जा रही है। ऐसे में इस टीम की नजर हर मैच में अपना मनोबल बढ़ाने और बेहतर कॉम्बिनेशन तलाशने पर होगी। अगर मेहमान टीम अफगानिस्तान की बात की जाए तो उनकी नजर किसी भी हालत में इस मैच को जीतकर श्रृंखला में वापसी और बराबरी करने पर होगी। पहले मैच में शतक बनाने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छी लय में हैं। राशिद खान, अजमतुल्लाह उमरजई और इब्राहिम जादरान से भी मेहमान टीम को उम्मीदें होंगी। अगर ये खिलाड़ी चलते हैं तो भारत के लिए काफी हद तक मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम की नजर तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए चेन्नई पहुंचने से पहले ही सीरीज अपने नाम करने पर होगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम की नजर होगी कि तीसरे मैच से पहले श्रृंखला को अपने नाम कर लिया जाए। वहीं दर्शकों की नजर होगी कि इस बार धर्मशाला की तरह बारिश इस खेल में कोई खलल डालती हुई नजर न आए। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक नई दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की पहली और एकमात्र तलवारबाज ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी की अगुवाई में 12 महिला और 12 पुरुष खिलाड़ियों वाली 24 सदस्यीय भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव और अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ

0: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रिभोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम

0: शिक्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देशभर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा,

0: जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I'm

केंद्र है। समय रात्रि के 9 बजकर 15 मिनट हुए हैं। श्रोताओं, ये जाते जाते हम आपको कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दूं।